ऐसी वो वाली की मंगाई थी मिनिस पोन पर हो इधर बुई ना के आयो ते तो वो ना पर बुबुसी है रिपोन कभी ना पर हो इंगन ना बुबुसी के गाय नंग बने पुआर ताई आय कांगे ते आगे ना बुबुसी आयो मैं उरी ना बुबुसी री की कतंगन ते कुना रे तंगे ने मेतन कई ने आउ ते मोने इरों तो वो रे चेडी बॉय पास अपन काग बोसुरा नगुंगुरा यौन कवाईरं तो किरी काग ना कुने मोयंगरा कोरापा कोरापा आह कोरो मैं उरी ना पंगे ते मोने जूनियर ते कवा आयो ते कुना रे कतंगिरिया pa kunang ora yakin tamon nga pung na pa iyo okay ah tangin meten kainiaw tamon na mayron JD boy.